0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता,
1: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता।
0: ये सांस लेने जैसा है।
1: कांच,
2: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
4: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70:21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17:26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें। हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए, जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें। जो भी बंधन है, उन्हें तोड़ दें। शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
1: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078119 and 7598112435. Our email address is linkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं,
1: और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
1: यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है,
1: पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
1: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
1: भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगाने युग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4 इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: எங்களின் ஏசுவின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4: எங்கள் முகவரி ஏசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 6431-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 7598-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101 Nilgiri, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address aswinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
5: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनो पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church! अपने दोनों हाथों को

यीशु के आशिक है, यदि आप यीशु के आशिक है तो आप शर्माएंगे।

अपने दोनों हाथ उठाकर आई लव दिस आप लोग आगे नाच सकते हैं दोनों हाथ उठाकर।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

हूँ ताने बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। Yes, Lord, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह है जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशाया अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

प्रियम ताली बजा कर उसके नाम प्रेम करे आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे यस लॉर्ड उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं दिल उसने मांगा मेरा जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं मन

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है।
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
5: स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको, मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: करके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: एलेक्स, हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है। ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

चलो बस कुछ गैलन ही चाहिए। मुझे कुछ गैलन दे दो।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है, हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है।
1: हम इसके नीचे दब गए हैं,

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
3: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,
1: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8 वचन 34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों, जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि हम सब एक हों? हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहाँ मैं हूँ वे भी वहाँ रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
1: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
0: हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें। जो भी बंधन है, उन्हें तोड़ दें। शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझमें कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
1: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய ஆறு மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கோனு 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address is linkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं,
1: और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
1: 1 कुरिन्थियों 7:31। तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले
1: धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
1: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
1: भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
2: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगाने युग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें?
3: हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए?
2: यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37।
1: प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें।
2: उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है?
1: यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23।
2: प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें?
2: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें,
1: प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें।
2: इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
1: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10।
2: क्या आपने इस बात पर गौर किया है
1: कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है?
2: उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है।
1: प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं।
2: क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4
1: इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उनका सामना करने में संकोच न करें।
2: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
1: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
2: यूहन्ना 16:33 इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए।
1: स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे।
2: इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
1: प्रेरितों के काम 14:22
4: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता।
2: हमारे पास एक शानदार शहर है, उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए।
2: इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
1: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया।
2: ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
5: எங்களின் இயேசுவின் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
6: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12/80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 7598-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
7: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनो पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church!

हैं। आई लव दिस, आई लव दिस। आप लोग आगे नाच सकते हैं, दोनों हाथ उठे। एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा।

प्रियम दादी बचा कर उसके नाम की महिमा करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिथियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिथियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो, वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेश अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो, सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा। 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

क्षमा करने शापों को दूर करने समीप पे आया मसीहा, रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सूली पे चाँदे दिया, पापों को क्षमा करने

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

प्रेम है, ताली बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है,
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा, रुको मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ब्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: करके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

परिधि को बंद करें। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहाँ नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम है
1: मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ

दिखाऊंगा कि कैसे सुंदर और बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: एलेक्स, हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है। ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैश को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
3: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,
1: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70:21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, वे सब एक हों, जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17:26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17:24, हे पिता जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु, आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें, आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे,
1: प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं, हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
2: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था।
1: हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए, हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए, हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था, मैं मर गया था, फिर भी देखो, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो, उसे दूर कर दें। जो भी बंधन है, उन्हें तोड़ दें। शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह संपन्न हो। जिनके पास संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं, उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो परिवार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं, उन्हें विजय प्रदान करें। बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दे। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
2: அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ், 12 bar 80, அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கூனூர், 643-101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address acvinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा,
0: पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11। प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14।
0: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
1: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले
1: धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16। प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
1: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
0: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
1: प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं, वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
0: इब्रानियों 13:14-15।
1: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
0: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
2: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे।
1: भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें?
2: हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा,
1: तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37।
2: प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है?
1: यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे।
2: यूहन्ना 14:23।
1: प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
2: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें?
1: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें।
2: इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है।
1: जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
2: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
1: मत्ती 5:10।
2: क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है?
1: उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है।
2: प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। एक थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
1: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां। इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
2: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: करम तमिल आंगलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मोड़ कर्तन कृपया
4: मुखवरी अंबेडकर नगर डार्लिंगटन ब्रिज कुन्नूर 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643101 நீலகிரி South India. Cell phone numbers 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
5: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुफ्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church. अपने दोनों हाथों को ऊपर वाले अपने दोनों हाथ

आशिक तेरा।

को क्षमा करने, शापों को दूर करने, समीप पे आया मसीहा। रोगों से मुक्ति देने, अनंत जीवन देने, सूली पे जा दे दिया। पापों को क्षमा करने, शापों को दूर करने, समीप पे आया मसीहा। रोगों से मुक्ति देने, अनंत जीवन देने।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रेम ताले बजा कर उसके नाम में मकरे आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराधना करे। Yes Lord, उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था, इसलिए शास्त्र कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें,
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7,
इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुक के प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मामे जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशाया अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सोली पे चाते दिया, पापों को क्षमा करने शापों को दूर करने समीप पे आया मसीहा।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

रही हूँ, ताने बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसके आत्मा का है। Yes, Lord. उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको मैं आ रहा हूं, आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत झंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है। आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
5: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: लेके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं,
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं।
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

0: नमस्कार, मेरा नाम है
1: मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ

सिखाऊंगी कि कैसे सुंदर और बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान,

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: जगह में 101.3 एफए सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया, एलेक्स सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है, हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस ब्लैक को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ। एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं।

0: फिलिक्स,
1: धूल बहुत घनी है,
0: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन में

0: मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता।
0: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,
1: पकड़ना।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

0: किया? इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला। उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 8
1: वचन 34।
0: दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही है, हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70
1: वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है।
0: मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया।
1: उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17
0: वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17
1: वचन 15। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17
0: वचन 24। हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें। आपको मेरे भीतर रहना चाहिए।
1: हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं, वे हमें सामर्थ देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे ना केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
2: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए। हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए।
1: हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए जैसा कि आपने किया है हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ्य हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी रोग हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी कमजोरी हो आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है उन्हें शांति दीजिए, जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो परिवार व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं उन्हें विजय प्रदान करें, बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
3: एंगलिन एजरिन करम मादांद्र इदलानद तमिल आंगिलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मुलिल कर्तन कृपयाल वेलिवरिकिंचदु इपत्रिके वेंडोर एंगलद मुगवरी तड़ुबु कोलला
4: एंगल मुगवरी येसुविन करम 12 इन கீழ் 80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் குன்னூர் 643-101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435 இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643-101 நீலகிரி சவுத் இந்தியா செல்போன் நம்பர்ஸ் 944-30-780-19 and 75-98-11-2435 Our email address acvinkaram@gmail.com Our website handofjesus.in God bless you.

प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया।

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं।
1: हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है?
1: क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31।
1: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मत्ती 11:12।
1: इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
1: 2 कुरिन्थियों 5:8।
0: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
1: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
0: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
1: यूहन्ना 17:24।
0: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
1: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
0: भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे।
1: भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1।
0: पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया।
1: प्रकाशित वाक्य 19:3-4।
0: बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
1: पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया।
0: तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें?
1: हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए?
0: यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37।
1: प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें।
0: उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है?
1: यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे।
0: यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते,
1: तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें?
0: इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें,
1: प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें।
0: इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं।
1: चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
0: मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है
1: कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है?
0: उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है।
1: प्रेरित पौलुस यही कहता है
0: कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं।
1: क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। एक थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें।
0: ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले।
1: संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33।
0: इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए।
1: स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
0: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता।
0: हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए।
0: इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ।
1: प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
2: எங்களின் ஏசிலும் கரம் மாதாந்திர இதழானது தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
3: எங்கள் முகவரி ஏசிலின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ், ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், கோனூர், 643101, நீலகிரி, சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
4: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंत काल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुफ्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकूब पर वरनों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

आज का वादा यशाया अध्याय 12 पद 2 की पुस्तक। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हाँ प्यारे लोगों, प्रभु हमारी ताकत है। आप सोच सकते हैं कि मुझ में कोई ताकत नहीं है। क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? मैं बहुत थका हुआ और कमजोर हूँ। प्रभु हमारी ताकत है। डेविड ने कहा, हे यहोवा, तू मेरा बल है और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। हमें उससे प्यार करना चाहिए। वह हमारी ताकत है। आपको उसे मजबूती से पकड़ना होगा। हमें उससे कहना चाहिए, यीशु, तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी शरण हो, तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। अगर हम उनके चरणों पर टिके रहे तो वे हमारे लिए ताकत बनेंगे। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 25:4 कहता है कि क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़। क्या तुमने ध्यान दिया? मेरे पास कोई नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या करना है? परमेश्वर गरीबों के लिए शक्ति है। वह न केवल अमीरों को बल्कि अमीर और गरीब को भी ताकत देता है। चिंता मत करो। हाँ प्रियो, जब भी मेरे जीवन में कमजोरी होती है, प्रभु ने मुझे मेरी कमजोरी से मुक्ति दिलाई है। वह आपके जीवन में आने वाली कमजोरी से भी आपकी रक्षा करेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना होगा। उस पर विश्वास करो और जियो। निश्चय ही वो आपके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी ताकत हैं। उन सबों को दृढ़ करो जो पछताते हैं कि मैं इस समय बलवंत नहीं हूँ, कि मैं रोगी हूँ और खाने की शक्ति नहीं रखता। टाइफाइड और कैंसर के बारे में चिंता करने वालों के लिए चंगा करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बच जाएंगे। आपने कहा था कि ये गरीबों की ताकत है। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। 1000 धन्यवाद। हम क्या करते हैं कि आपको रोने वालों की रक्षा और रखरखाव करना है। प्यारे पापा, हमें उनकी सभी कमजोरियों को बदलने और उन्हें नया जीवन देने की जरूरत है। सभी जरूरतों को पूरा करें और सभी के आंसू पोंछें और उनका हाथ पकड़कर नेतृत्व करें। हम आपको महिमा और सारी महिमा लाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।

0: आज का वादा भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 27 पद 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भले ही ये दुनिया हमें छोड़ दे, परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा। हमारे पिता ने मुझसे कभी बात नहीं की, हमारी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। कितने लोग परवाह करते हैं कि हमारी माँ ने मुझे नोटिस नहीं किया और जहाँ पिताजी ने मुझे नोटिस नहीं किया। प्रभु को थामे रहो कि तुम अकेले ही काफी हो, वह हमें क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास माँ और पिताजी भी नहीं है, परमेश्वर ने मेरा इलाज किया। माँ और पिताजी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। क्या आपको आपके बच्चों ने छोड़ दिया है? क्या आपको आपके माता पिता ने त्याग दिया है? क्या सभी ने आपको छोड़ दिया है? परेशान मत होइए, प्रभु हमारे साथ होंगे। परेशान मत होइए, वह आकाशों और पृथ्वी का रचयिता है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो, आंसू पोछो। चिंता मत करो, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे पास कोई माँ नहीं है और कोई पिता नहीं है और कोई आँखों की दृष्टि नहीं है, तो अभी परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। वह आपकी भी अगुवाई करेगा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। परेशान मत होइए। क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय पिता, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की जय हो। मेरे बच्चों ने छोड़ दिया है, हमसे बात नहीं कर रहे। क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद दें जो चिंतित हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है? आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। आप सभी को अपना ख्याल रखना है। अविवाहित संतानों का विवाह अवश्य करना चाहिए। कर्ज की समस्या को बदलने की जरूरत है। लोगों की मदद करें और महान कार्य करें। हम आपकी महिमा करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: अध्याय 14 पद 27 की पुस्तक। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि परेशान और डरो मत। इस दुनिया में जो भी समस्या आएगी, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए परेशान और डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की यही वाणी है, मैं सब विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। यशाया की पुस्तक अध्याय 49 पद 16। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में खींचा है, उसके हाथों को पीटा और कुचला गया था, उस हाथ में वह हम सभी को गढ़ा गया है। यदि आप अपनी हथेली में पैसा रखते हैं, तो क्या आप इसे नीचे रखेंगे? हम अपनी हथेली में जो कुछ भी रखते हैं, उसे नीचे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे कितना सुरक्षित रखेंगे? मनुष्य इस हद तक रक्षा करता है कि हम का रचयिता हमें अपनी हथेली में कितना रखता है और हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें सहारा देता है और अपने प्रेम से हमें गर्म करता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सबको सुख और शांति दो, सभी को आशीर्वाद दें, रक्षा करें और ऊपर उठाएं। आपका आशीर्वाद उन्हें घेरे रहे, उनकी जो भी कमजोरी है उसे ठीक करना, किसी भी बीमारी को ठीक करता है। प्रिय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें पूरी तरह से चंगा करो और अपने नाम की महिमा करो। मैं आपको सभी प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना को यीशु के नाम से करता हूँ। अध्याय 2 पद 10 की पुस्तक। आमीन। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर का भजन गाएंगे, तब वह आकर हमारे बीच वास करेगा, वह हमें वास करेगा। जब वो हम

प्यारों, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 15, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें पूरे जोश और सोच के साथ गाना चाहिए। जब हम ऐसा गाएंगे तो यहोवा आकर हम में वास करेगा, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपने कितनी बड़ी खुशी, ये क्या ही आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, समुद्र और फव्वारे का निर्माता हमारे भीतर है। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी पूरे आत्मा और दिमाग से गाने में आपकी मदद करे, बेशक वह आकर हम में वास करेगा। क्या अब हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। अपनी स्तुति गाने में मेरी मदद करें। पिताजी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके लिए हमारे साथ थाना और रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु, हमें हमारी पूरी आत्मा और हमारे पूरे दिल से गाने में मदद करें। अपने नाम की महिमा करने में हमारी मदद करें। पिताजी, हम आपकी सराहना करते हैं। आपको जीवित वचनों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की चिंताओं और दुखों को बदलने की आवश्यकता है। हर आंसू पोंछे और अपार खुशी दें। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। ये करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय 1 पद 15। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हाँ प्यारे लोगों, इस दुनिया में कितने बोझ हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी थकान है। क्या करें? हमें अपनी सारी चिंताओं को मनुष्य को बताना बंद कर देना चाहिए और अपने प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहिए। हमारे दिल में जो भी चिंताएं, बोझ, दुख और दर्द हैं, उन्हें हमारे प्रभु समुदाय में बताया और प्रार्थना की जानी चाहिए। हमें किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। हन्ना स्त्री ने वैसा ही किया। न जाने कितने लोगों ने संतान न होने पर उनके बारे में अभद्र बातें की होंगी। हो सकता है कि उन्हें बहुत सी पीड़ाएं, दुख और चिंताएं हुई हों, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में डाल दिया और उसके बाद शोक नहीं किया। हमें यही करना चाहिए। किसी के पास जाकर बताने का कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमें अपने बोझ, अपनी चिंताएं, अपने दुख, सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में डालना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी चिंता दूर करेगा और निश्चय ही हमारे आंसू बदल देगा। चिंता मत करो। भजन संहिता अध्याय 62 पद 8। उसे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि वे यह समुदाय में क्या करना चाहता है? हमारे दिलों में चाहे कितने भी बोझ और चिंताएं हों, हमें उनके चरणों में कहना चाहिए। जितना चाहो उससे कहो। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप इतने लंबे समय से ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमारी प्रार्थनाओं को तब सुनता है जब हम हृदय के बोझ और चिंताओं को उसके सामने रखते हैं। इसलिए लोगों को बताना बंद करो। परमेश्वर को अपनी चिंता बताओ। प्रभु निश्चित रूप से आपके सभी आंसुओं को बदल देंगे, आपके सभी दुखों को बदल देंगे और आपकी सभी ऋण समस्याओं, बीमारियों, कमजोरियों, बीमारियों को बदल कर आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आप चिंतित हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं कि आपको बच्चा पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही आप पर चमत्कार करेगा। निराश मत होना। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पापा। विभिन्न ऋण समस्याओं वाले परिवारों की ऋण समस्याओं को बदलें। आप ही हैं जिसके पास दौलत है। जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हमें पढ़ने वाले छात्रों को ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें बारिश से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर घर बनाने की जरूरत है। हम आपसे इस बारिश की बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने के लिए कहते हैं। बस अपने नाम के

0: हिमा करो, हर परिवार को आशीर्वाद और प्रगति दें। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना
1: आज का वादा
0: हैं।
1: भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 121 पद 6। दिन में सूरज की रोशनी या रात में चांद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ प्रियो, इन दिनों हम सुबह धूप और रात में ठंड पाते हैं। इन अंतिम दिनों में यही होगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि न तो सूरज और न ही चांद हम पर दिन रात हमला करेगा। ये हम सभी के लिए बहुत शांत इलाता है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 पद 8-9, चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से जलाने का अधिकार दिया गया। मानव जाति गर्मी से झुलस गई थी और उसने परमेश्वर के नाम की निंदा और महिमा करने से पश्चाताप नहीं किया, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था। इन छंदों के माध्यम से परमेश्वर ने प्रकट किया है कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और आग से तबाही होगी, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा और पश्चाताप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रभु कहते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 49 पद 10, वे भूखे और प्यासे होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। प्रभु का शास्त्र कहता है, यशाया की पुस्तक अध्याय 4 पद 6, वह दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और छड़ी में एक शरण और आड़ होगा। मत भूलो, निश्चय ही परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। क्या हम अभी प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मेरा आपको धन्यवाद। चमत्कार करो, चमत्कार करो भगवान। जीवन, सुख और शांति दो, उनके आंसू पोछो और उनके दुखों को बदलो। ऐसे में कई लोग अपने केस को लेकर चिंतित रहते हैं। हे प्रभु, उन्हें शांति दे और उन्हें आनंद दे। हे प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा दे। केवल आप ही उन्हें खुशी और सुरक्षा दे सकते हैं। केवल आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं। उन्हें आराम और शांति दो और अपने नाम की महिमा करो। शुक्रिया। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु

0: का वादा, उत्पत्ति अध्याय 12:2, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके नाम को गौरवान्वित करेगा, वह आपको ऊंचा करेगा। वह आपको ऊंचा करेगा जहाँ आपने अपने जीवन में आंसू बहाए थे। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। आपने कितनी जगहों पर अशांति का अनुभव किया है? लोगों ने आपसे कितनी जगहों पर नफरत की है? कितनी जगहों पर लोगों ने आपकी निंदा की है? क्या आपको लगता है कि मैं लोगों के बीच घृणित हूँ? परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा। वह सिर उठाएगा, वह आपको आशीर्वाद और ऊंचा करने के लिए निश्चित है। किसी बात की चिंता मत करो, निश्चय परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करेगा। वह आपको खुश रखेगा, उसका कोई समकक्ष नहीं है और उसके जैसा कोई नहीं है। सभी को आप पर गर्व होगा कि वे कितने खुश हैं, और सभी कहेंगे कि उनमें सभी आशीर्वाद भरे हुए हैं। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। क्या अब हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें? सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ परमेश्वर, और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारिक कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को यीशु के नाम अध्याय 28:25, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ प्रिय लोगों, आपको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वह आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, वह आपके व्यवसाय में समृद्धि लाएगा, वह आपके पेशे में समृद्धि लाएगा, वह आपकी मुश्किलों को बदल देगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आप जहाँ भी जाए, परमेश्वर आपको आत्माओं को परमेश्वर के पास लाने का आशीर्वाद दें। आपको अच्छी आध्यात्मिक समृद्धि भी मिलेगी। आप प्रभु के भीतर अच्छी तरह विकसित हो सकते हैं। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुग्रह उन्हें घेर लेता है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। उस पर पूरा भरोसा करें, वह तुम्हें अनुग्रह से घेर लेगा। इतना ही नहीं, होशे अध्याय 12:25 की पुस्तक कहती है, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। हमें उस पर लगातार भरोसा करना चाहिए। एक बार जब आपको लाभ हुआ हो तो प्रभु पर भरोसा करना न छोड़ें। पवित्र शास्त्र हमें बिना रुके अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए कहता है, यीशु मेरे लिए काफी है, चाहे कुछ भी आए। और अगर हम दृढ़ता से मानते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, तो प्रभु आपके जीवन में असीम आशीर्वाद, शांति और आनंद लाने और आपको ऊंचा करने में सक्षम है। थकना मत। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद पिताजी, हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करें जो आपके जीवित वचनों को सुनता है। उन्हें आप पर भरोसा करने में मदद करें। आप पर निर्भर रहें और आपको जानें। अविवाहित बच्चों की अच्छी शादी करनी चाहिए। व्यवसायिक परिवारों को अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से चलाने में सहायता करें। व्यवसाय परिवारों को बेहतर व्यवसाय करने का आशीर्वाद दें। हर परिवार को आशीर्वाद दें। परिवारों में पाई जाने वाली सभी समस्याओं और संघर्षों को बदलें। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग धैर्य और उन्नत हों और आपके बच्चों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का आशीर्वाद मिले। उनके आध्यात्मिक जीवन में हर दिन बढ़ने में उनकी मदद करें। परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रत्येक सेवक के लिए कई आत्माएं उपलब्ध हों। परमेश्वर को परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत सारी आत्माओं को लाने में मदद करनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे आत्माओं को परमेश्वर के पास नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के सेवकों का बहुत शक्तिशाली उपयोग करें। आशीर्वाद और महिमा दो। हम आपको सभी प्रशंसा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: अध्याय 14:16।
0: आमीन।
1: प्रिय भाइयों बहने, ईश ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन है ये दूसरा कम्फर्टेटर? वह पवित्र आत्मा है। एक अन्य कम्फर्टेटर का अर्थ है सहायक। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है, अय्यूब अध्याय 33:4, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वह वही है जिसने हमें बनाया है। शास्त्र कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा तो हम सभी चीजों में मुक्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ईश ने कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के सर्व भाग तक मेरे साक्षी बनोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, हमारी आत्मा आत्मा और शरीर को समृद्ध करती है। वह हमें गवाह के रूप में बदल देता है। और शास्त्र एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 12:27, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इसलिए आज ही पवित्र आत्मा प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा दें। पवित्र आत्मा का अभिषेक अनिवार्य है, जरूरत है। लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य दें। वे जहां भी जाएं उनकी रक्षा करें। सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और ऊपर उठाएं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ यहोवा। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
0: भजन संहिता 107:20,
1: वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ प्रिय लोगों, क्या डॉक्टरों ने हार मान ली कि बीमारी दूर नहीं होगी? आपको कब लगता है कि ये सही होगा? प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा करने और विनाश से बचाने के लिए अपना वचन भेजा है। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर छंद भेजता है और चंगा करता है। केवल वही आपको ठीक कर सकता है। अपनी कमजोरी चाहे जो भी हो अपने आंसू पोछो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह को देखो। निश्चय ही वो तुम्हें चंगा करने में समर्थ है और तुम्हें विनाश से बचाएगा। वह निश्चय ही तुम्हें विनाश से बचाएगा। परेशान मत होइए। अपने आंसू पोछ लो। शायद डॉक्टर ने हार मान ली। आपको कैसे लगता है कि ये सही है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वह निश्चय ही तुम्हें चंगा करेगा और आशीष देगा। वह आपको दिव्यानंद देगा। आंसू पोछ लो। जॉन अध्याय 6:4, श्लोक 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जब परमेश्वर का वो वचन आपके पास आएगा तो आपकी आत्मा बहुत पुनर्जीवित हो जाएगी। उनके श्लोक कैसे हैं? ये जीवित है। ये हमारे अंदर आने पर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। जब उसका जीवन हम में आता है तो हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कई चमत्कार और संकेत करने में सक्षम है। क्या हम उसकी ओर देखें? वह यहोवा तक दया करेगा, वह सब विनाश से बचाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, शुक्रिया। कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं? परमेश्वर, हमें उन्हें ठीक करने और दर्द को ठीक करने, कमजोरी को ठीक करने, कैंसर पीड़ितों को ठीक करने, डेंगू बुखार पीड़ितों को ठीक करने की आवश्यकता है। कृपया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ठीक करें। आने वाले नए साल को आशीर्वाद दें और इसे अच्छाई से भर दें। आपका नाम गौरवान्वित करता है भगवान। आप जिस प्यार के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: एक प्यारे पिता, आमीन।
1: अध्याय 16 पद 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आपको हर दिन उसका चेहरा ढूंढना होगा। हमें हर दिन परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए और उन्हें खोजना चाहिए। वह हमारे लिए महान कार्य करता है। हमें हर दिन यीशु मसीह की तलाश करनी चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक का अध्याय 16 पद 11 कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वह हमें पूर्ण सुख देते हैं। हमें उसे प्रतिदिन खोजना चाहिए। वह जबरदस्त काम करता है और हमें पूरा आनंद देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या चीजें हैं, हम उन चीजों में शांति नहीं पा सकते हैं, और बहुत सारा सामान रखने का कोई मतलब नहीं है। हमें हर दिन यीशु मसीह की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें बहुत खुशी देता है। प्रभु यीशु मसीह को खोजें और हमेशा उनके चरणों में प्रतीक्षा करें। वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। वही हमें शाश्वत सुख दे सकते हैं। वही हमें महान आशीषें दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास यह सब है, ये शांति नहीं लाता है। हाँ प्यारे लोगों, आइए उसे खोजने का फैसला करें। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वे हमें बहुत खुशी और शांति देता है। हमें खुशी देता है कि कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमसे खुशियां नहीं छीन सकता। तुम प्रभु को खोजो और प्रार्थना करो, निश्चय ही वो तुम्हें आशीष देगा। तुम्हारी जो भी कठिनाइयां हों, वह बदलेगा। वह तुम्हारे आंसुओं को ठीक कर देगा। प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, निश्चय ही यीशु आपको अच्छी नौकरी देंगे। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। यीशु आपके परिवार की किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। यीशु भी पियक्कड़ को बदल देता है। भजन संहिता के अध्याय 114 का श्लोक 8 कहता है, चट्टान को पानी की झील और कंकड़ को पानी में बदलना। हे प्रियवी, यहोवा के सामने और याकूब के परमेश्वर के सामने काम, चिंता मत करो, वह आपके लिए एक अद्भुत काम करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको अपने बच्चों को चिंता से मुक्त करने की आवश्यकता है। शराबियों को रिहा करो, एक चमत्कार बनाएं, शराब से नफरत करने में उनकी मदद करें। जिसने चट्टान को जल का कुंड और चट्टान को नाला बना दिया, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।

जब कभी हम नाकाम हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी से मायूस ही नहीं बल्कि खुद को कमजोर समझते हैं। ये गीत यशया बाब 40 आयत 28 से 31 पर आधारित है। कुव्वत व सब्र, हिम्मत देगा तुम्हें वही, गर है भरोसा उस पे हो लाख मायूसी।

0: आज का वादा इब्रानियों अध्याय 13:6। इसलिए हम बेदर्क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथी है, वह वही है जो हमारी मदद कर सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक काम करना चाहिए, प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमारा सहायक होगा। भजन संहिता 28 अध्याय 7 पद की पुस्तक कहती है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हमारे दिल को पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई भी इंसान एक भ्रम है। यदि हम केवल प्रभु पर भरोसा करते हैं तो सहायता उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मदद जरूर मिलेगी। क्या हम उससे प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं उन पर दया करो। बहुतों को समस्याएं और संघर्ष हैं। हे मेरे परमेश्वर, लोगों की समस्याओं और संघर्षों को बदलें। कई लोगों को तरह तरह की आपत्तियां हैं। विरोध के बीच यहोवा परमेश्वर को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। आपने कहा था कि जब शैतान बाढ़ की तरह इकट्ठा होगा तो पवित्र आत्मा उसके खिलाफ झंडा उठाएगा। आपके बच्चों के खिलाफ बहुत सारे जादू और जादू मंत्र हैं। सभी बुराइयों और समस्याओं से हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जीवित रहें और सुरक्षित रहें। सबका ख्याल रखना, परमेश्वर की कृपा उन्हें घेर ले। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक का प्रार्थना को यीशु के नाम से पूछता हूँ। अध्याय 30 श्लोक 5। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तुम्हें गुणा करना परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो क्या करें? इब्रानियों अध्याय 6:14-15 कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में समृद्ध और गुणा करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हमें उसके द्वारा किए गए वादे के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। लंबे समय तक प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और परमेश्वर को जानना चाहिए। तब परमेश्वर निश्चय तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुणा करेगा। उसने आशीर्वाद और गुणा करने का वादा किया है। हमें अपने जीवन में वादा पूरा होने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उसके भजन गाना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में हमें गुणा करेगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जीवित वचन को सुनने वाले सभी के जीवन में बहुतायत दे। उन्हें हर चीज में गुणा करने दे। आशीर्वाद और लाभ प्रचुर मात्रा में हो। हम आपको पूरा सम्मान और गौरव देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: हाँ प्यारे लोगों, मैं आप सभी को मेरी ओर से नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सपयाह की पुस्तक अध्याय 3:15। यहोवा ने 13 दंड दूर कर दिया और 13 शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। अब आप नुकसान नहीं देखेंगे। चाहे कितने ही लोग काम से बाहर हों, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, यहोवा ने कहा था कि वो 2022 में आपके बीच होगा। प्रभु को अपने बीच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हागाई की पुस्तक अध्याय 2:5। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मिस्र का क्या मतलब है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6:12। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। गुलामी का क्या मतलब है? पापपूर्ण दासता को संदर्भित करता है, इसलिए हमें पाप के बंधन से बाहर आना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या हम निश्चित रूप से पाप से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। पिछले वर्ष के कई खतरों और विपत्तियों के दौरान हमारी रक्षा करने, दृढ़ करने और दृढ़ करने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस पूरे वर्ष सभी के साथ रहें। पीछे हटने से बचना चाहिए और सभी चिंताओं, आंसुओं, पीड़ाओं को बदलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
0: अय्यूब की प्यारे पिता,
1: आमीन।
0: 42:2।
1: मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ मेरे प्यारे लोग, वह मेरा कर्ज दे सकता है, वह हमारे दुखों को बदल सकता है, वह आपकी समस्याओं को बदल सकता है। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? चिंता मत करो, हमारे भगवान आपके बच्चों को ज्ञान और स्मृति शक्ति देंगे, वे अध्ययन करेंगे। क्या आप इस बात से परेशान हैं कि स्कूल की फीस कैसे चुकाएं? चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई योजना असंभव नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने आपके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है, बिना किसी बाधा के वह आपके लिए ये करेगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता, तो चिंता मत करो, निश्चय ही वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा। योएल अध्याय 2:21 की पुस्तक है, देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी भूमि से डरो मत और आनंदित रहो, यहोवा की यही वाणी है। हम सोचेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन सांत्वना देने वाला है और ये आपको शांति देगा। हे देश तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। डंडा, तुम खुशी से कहोगे कि मेरा प्रभु मेरी देखभाल करेगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा, ये हमारी आँखों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्या आप चिंतित हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते? चिंता मत करो, परमेश्वर बड़े चमत्कारी कार्य करेगा। अपने आंसू पोंछ लो, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, उन लोगों का कर्ज चुकाओ जो कर्ज में हैं। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ठीक करें, जो लोग कमजोर हैं उन्हें मजबूत करें और आपके नाम पिता की महिमा करें। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। वे लोग जो बुरी आत्मा और भय से पीड़ित हैं, उन्हें उनके सभी संघर्षों और समस्याओं से मुक्ति देना। परमेश्वर आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे यहोवा, तेरा पराक्रमी अनुग्रह उन्हें घेर ले। जो कुछ हमने प्रार्थना में कहा है वह तुम करने जा रहे हो, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं आपको यीशु की स्तुति, हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज के पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं। 52:12।
0: आमीन।
1: क्योंकि यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तेरा प्रतिफल होगा। हाँ प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, यहोवा आपके आगे आगे चलता है। तुम चिंता मत करो, शायद साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, यहोवा तेरे आगे आगे चलकर बड़े बड़े काम करेगा। यशाया अध्याय 45:2 की पुस्तक कहती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ प्रियो, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और कुटिलों को सीधा करेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और भगवान आपके जीवन में महान कार्य करते हैं, तो वे आपकी सभी बाधाओं, कठिनाइयों, आंसुओं और दर्द को बदल देगा। कभी चिंता मत करो, बेशक आपको काम मिल जाए। क्या आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं? प्रभु आपके आगे आगे चलेंगे और आपको परीक्षा में सफल होने की बुद्धि देंगे। चिंता मत करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो और चले जाओ, वह महान कार्य करेगा। क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? प्यार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी हैं। जो लोग काम पर जाते हैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता दें। आपके नाम की महिमा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस लिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा रखें, सभी बाधाओं को दूर करें और आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आप सभी की जय हो। हम यीशु मसीह अच्छे पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं। अध्याय श्लोक 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हाँ प्रियो, घोड़ा युद्ध के दिन के विरुद्ध तैयार है। इस तरह हम वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जीत परमेश्वर की तरफ से होती है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसमें प्रभु को सफलता अवश्य देनी चाहिए। उच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं? केवल परमेश्वर ही आपको सफलता दे सकते हैं। उससे नियमित रूप से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, बाइबल पढ़ें और विश्वास करें कि हमारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पहले ईश्वर को खोजिए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब भी तुम्हें दिया जाएगा, तभी वो आपको जीत दिलाएगा। अपने जीवन में हर चीज में परमेश्वर को पहले रखें, उसे अपने सामने रखें और परमेश्वर आपको ये सब देगा, वह सफलता लाएगा। आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। यदि आप व्यापार में असफल होते हैं तो भी परमेश्वर आपके परिवार में परेशानी, आंसू, चिंताएं बदल देंगे और परमेश्वर जरूर बदलेंगे। प्रार्थना करो और देखो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार और लाभ करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें विजय प्रदान करेगा। वह तुम्हें कर्ज से मुक्त करेगा और तुम्हें आंसुओं से मुक्त करेगा। केवल वही आपको मुक्त कर सकता है। आप पूर्व या पश्चिम से नहीं जीतेंगे। सफलता किसी जंगल से नहीं मिलती, विजय प्रभु की ओर से आती है। परमेश्वर की स्तुति करो जो हमें विजय प्रदान करता है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत से लोग अपने पेशे के बारे में चिंता करते हैं। वे चिंतित हैं कि मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को आशीर्वाद दे और उन्हें जीवन में सफल बनाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो व्यापार के नुकसान से चिंतित हैं। उन्हें सफलता दें, उनके जीवन में अच्छे काम करें। चमत्कार और चमत्कार करो प्रभु। छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करें और बुद्धि और स्मृति देकर सभी परीक्षाओं को पास करें। उन पर दया करो प्रभु। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। हे परमेश्वर, उन्हें सब रोगों से चंगा कर और अपने नाम की महिमा कर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक दानियल पुस्तक से अध्याय 3 पद 17। आमीन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर हमें मुक्त कर सकता है। मेरे पास इतनी कठिनाइयां हैं, मुझे कौन छुड़ाएगा? इसलिए तुम आंसू बहाओगे, अपने आंसू पोंछ लो। निश्चय हमारा परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से बचाएगा, तो थको मत। बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91 पद 3, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस दुनिया में कीट बढ़ रहे हैं, परेशान मत होए। तो बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91:6। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अथक प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय ही हमें बचाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मेरा धन्यवाद। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दे परमेश्वर। उन्हें आराम और अच्छाई दो। दया गुल होनी चाहिए। उन्हें मौन से भर दो। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी होगी। हर तरफ जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। आपको हमें इन सभी रोगों से मुक्त करना होगा। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कार्य करो और अपने नाम की महिमा करो। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ।
0: हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान मदद। क्या आप चिंतित हैं कि इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है? चिंता मत करो, मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। क्या आप इससे चिंतित हैं? चिंता मत करो, संकट के समय यहोवा हमारा सहायक है। वह किसी भी स्थिति में हमारा साथी होगा। चिंता मत करो, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। परमेश्वर महान कार्य करेगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या करना है? हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनका सहायक और ढाल होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वे आपका सहायक और ढाल होगा। हमें हर दिन उस पर भरोसा करना चाहिए। निश्चय ही वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। वह अच्छाई लाएगा। वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। आज से प्रभु पर भरोसा रखें। नए दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु में विश्वास करें, ये कहते हुए कि मैं अब प्रभु पर भरोसा रखूंगा। वह आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आपका साथी और ढाल बनने से आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हे हमारे प्रेमय धन के परमेश्वर, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है। संकट की घड़ी में उन्हें एक अनुकूल साथी बनने से बचाएं। उन्हें आप पर भरोसा करने की महान शक्ति दें। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। हर दिन उनका हाथ पकड़ें, उनके दुखों से उनकी रक्षा करें और अनेक क्लेशों की इस घड़ी में उनकी रक्षा करें। हम आपके लिए सभी महिमा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओ गुड फादर, आमीन, आमीन।
2: यूहन्ना की तीसरी पत्री। यूहन्ना यह पत्री अपने मित्र प्रिय गयूस के नाम लिखता है, जो विश्वास में स्थिर बना रहा, परंतु वह दिमेत्रियुस को फटकारता है, जो बुराई का अनुकरण करने लगा था तथा कलीसिया में अगुआ बन बैठा था। यूहन्ना अपने जीवन के अंतिम चरण में एशिया के कलीसियाओं में अपनी व्यक्तिगत बोझ का बोध करता है। यह पत्री अतिथि सत्कार और सत्य पर चलने के लिए जोर देती है, जिसका उदाहरण गयूस है। सारांश में पूरी पत्री प्रथम शताब्दी की कलीसिया को इस बात की चुनौती देती है कि सत्य के साक्षी देना और सत्य पर चलना

0: आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत है यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय एक कुल पद 13।
1: मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस, जो उसमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझ से शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार।
2: आज का वादा, योएल की पुस्तक अध्याय 2 पद 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक की तलाश में हैं। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने और वैसे भी उसे जानने की लालसा रखते हैं। निश्चय ही यहोवा पवित्र आत्मा का अपना अभिषेक तुम पर उंडेलेगा, इसलिए उन्होंने वादा किया था। जॉन अध्याय 16 पद 13 का सुसमाचार। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ प्यारे लोगों, ज्यादातर लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में आता है तो वे आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताता है। आइए अभिषेक ग्रहण करें, आइए आज प्राप्त करते हैं। आप कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं समझता, वह निश्चित रूप से आपको बाइबल में सब कुछ और सब कुछ बताएगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। भगवान सब पर कृपा करे, शास्त्रों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि और बुद्धि दो, उन्हें अपनी दया दो। पवित्र आत्मा जो सब कुछ सिखाती है, सब सिखाया जाना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से पूछता हूँ।
3: अध्याय 4:4।
2: आमीन।
3: हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है।

0: चिंता मत करो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भययोग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देखकर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है, मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान हैं। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु, आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता। आमीन, आमीन।
1: हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारे देश के लिए हमने अभी परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हमने प्रार्थना करी, उसकी सुरक्षा के लिए उसको आशीर्वाद करते हुए। क्यों ना हम एक गीत को भी प्रार्थना के रूप में परमेश्वर की तरफ उठाएं, और साथ साथ में एक घोषणा भी है इस गीत में। कितने लोग मेरे साथ जुड़कर इस गीत को गाना चाहेंगे? एक प्रार्थना के साथ साथ एक घोषणा।

हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमारे भारत देश का नाम है, आमेन। कितनों ने पढ़ा है? अमेरिका का नाम नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, लेकिन भारत का नाम हम हमारे परमेश्वर के वचन में, हमारे बाइबल में, आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है उसमें एक नहीं लेकिन दो बार पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में हमारे भारत ने स्थान पाया है तो जरूर परमेश्वर के दिल में उसके लिए खास योजना है, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो योजना पूरा होते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे, आमेन। चाहे पूरी दुनिया, पूरा नरक उस परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है वो हमारे देश में पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अगर दो बार नाम लिखा है तो हमारे देश में परमेश्वर दुगना बेदारी, डबल रिवाइवल भेजेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इस विषय में बातचीत किया है और पिछले 19 साल से इसी विषय के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी ही पीढ़ी में कम से कम इन बातों का शुरुआत में देखकर ही मेरी आंख बंद होंगे, आमेन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज है हम प्रार्थना करते रहें इस विषय के लिए, जो इच्छा परमेश्वर के दिल में है, जो योजना परमेश्वर ने हमारे देश के लिए बनाई है उसको हमें स्वर्ग से उतारना है, आमेन। कई सारी बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया, ये सब बनाकर किस लिए रखा है परमेश्वर ने? स्वर्ग में रहने के लिए नहीं, लेकिन धरती पर इन बातों को प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से उतारने के लिए, आमेन। हालेलुया। आज जब हम विश्वास से गाएंगे, बजाएंगे परमेश्वर की यह की स्तुति, आराधना जब हम करेंगे, स्वर्ग हमारे मध्य में उतर आने पाए, स्वर्ग इस शहर में उतर आने पाए, स्वर्ग हमारे देश में उतर आने पाए। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया। वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: आश्रय जगह में 101.3 FA एक सिग्नल खराब हो रहा है, जल्दी करो हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है।
2: ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया, एलेक्स सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

आपातकालीन सेवाएं रिवर कीक और स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: और मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस ब्लैक को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक गति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

मैं अब भी मॉनिटर्स की आवाज सुन सकता हूँ एलेक्स ट्रायर्स वार्ड में। मैं बीपिंग की आवाज और फिर कांच की आवाज सुन सकता हूँ।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है,
1: हम इसके नीचे दब गए हैं।

0: धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

0: अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो।
1: मैं नहीं कर सकता,
2: मैं हवा को फिल्टर नहीं कर सकता,
0: ये सांस लेने जैसा है।
2: कांच,

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
1: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34, दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है।

0: और हमारे लिए विनती कर रहे हैं वही हैं। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंदेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24, हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहाँ मैं हूँ वे भी वहाँ रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूँ, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें। आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं। वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं, तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो, मुझे धर्मी बनाओ, मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं, हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं, वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें। हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए। हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए। हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए, जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, आप चंगा करते हैं। चाहे कोई भी कमजोरी हो, आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है उन्हें शांति दीजिए, जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो परिवार व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं उन्हें विजय प्रदान करें, बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें। जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं, उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता,
1: தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய 6 மொழிகளில் கர்த்தரின் கிருபையால் வெளிவருகின்றது. இப்பத்திரிகை வேண்டோர் எங்களது முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
2: எங்கள் முகவரி இயேசுவின் கரம், 12-80 அம்பேத்கர் நகர், டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ், குன்னூர், 643-101, நீலகிரி மாவட்டம், தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. In English, Hand of Jesus Ministries, 12/80, Ambedkar Nagar, Darlington Bridge, Kono, 643-101, Nilgiri, South India. Cell phone numbers, 944-30-780-19 and 75-98-11-2435. Our email address is asvinkaram@gmail.com. Our website, handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों ना हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं।
1: हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है?
1: क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं,
1: और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है।
0: याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
1: यूहन्ना 14:3। तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
1: 1 कुरिन्थियों 7:31।
0: तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
1: पहले धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
0: इब्रानियों 11:16।
1: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
0: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
1: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
0: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
1: कुलुसियों 3:1-2। हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12। इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
0: प्रेरित पौलुस कहता है,
1: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
0: 2 कुरिन्थियों 5:8।
1: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
0: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
1: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
0: यूहन्ना 17:24।
1: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
0: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
1: भजन संहिता 23:6।
0: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
1: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
1: इब्रानियों 13:14-15।
0: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
1: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
0: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान
1: अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जानें? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
2: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
3: करम तमिल आंगलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे 6 मोड़ कर्तन कृपया
4: इपत्रिकेसुवी करम 12 नगर डार्लिंगटन ब्रिज कुन्नूर 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 7598-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கூனூர் 643-101 நீலகிரி South India. Cell phone numbers 944-30-780-19 and 7598-112-435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
5: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुफ्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Come on, church! अपने दोनों हाथों को

है. आई लव दिस, आई लव दिस. आप लोग आगे नहा सकते हैं, दोनों हाथ टुकड़े. एवरीबॉडी लिफ्ट योर हैंड्स.

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ।

लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल।

प्रियो ताले बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने सोना मांगा चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

को क्षमा करने, शापों को दूर करने, समीप पे आया मसीहा, रोगों से मुक्ति देने, अनंत जीवन देने, सूली पे चाँदे दिया, पापों को क्षमा

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल।

रही हूँ, ताली बजा कर उसके नाम नहीं मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराम न करे। Yes, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं, दिल

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
2: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
3: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।

दौड़ना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यायाम माना जाता है, जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

0: चल दर।
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स, क्या हो रहा है? पूरी इमारत धंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इस मंजिल पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं।
1: अगर तुम 10,000 टन कंक्रीट के नीचे दब गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। दौड़ो,

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ब्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: ट्रांसपोर्ट छत पर क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
4: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
5: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
6: क्या तुमने वो महसूस किया

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: ये ठीक हमारे पीछे है।
1: ये ठीक

0: करके चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम पकड़ना।

0: नमस्कार, मेरा नाम है
1: मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ मैं एक हूँ।

आपको दिखाऊंगा कि कैसे सुंदर और बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान, बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। Les señor, ¿quién está vestido? यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान,

0: इलेक्स हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया।
2: वातावरण में रिसाव हो रहा है,

0: जगह में
1: 101.3 एफए एक सिग्नल खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
2: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
1: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
2: एलेक्स, बस जाओ जाओ,

0: वो क्या था? ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उछल गया।
1: प्लेट, ये अभी भी फिसल रही है। ये मेंटल की धड़कन है। हमें अगले झटके से पहले चलते रहना होगा।

ये भूकंप नहीं है, ये बस जम रहा है। पूरी प्लेट अपना नया ठिकाना ढूंढ रही है। ये हो रहा है सारा।

0: गायब हो गया एलेक्स, सूरज गायब हो गया है। इतना अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा हूँ।
1: उस रोशनी को कम रखो, हमें बैटरियों को बचाना होगा। राख सब कुछ बंद कर रही है।

चलो बस कुछ गैलन ही चाहिए। मुझे कुछ गैलन दे दो।

आपातकालीन सेवाएं रिवर की कॉन्स्टेबल के साथ बड़े व्यवधान की रिपोर्ट कर रही हैं। तटीय निगरानी स्टेशन असामान्य समुद्री हलचल की रिपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नल बार बार गायब हो रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है।

0: इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाओ, अभी के अभी। चलते रहो, उन्हें अंदर ले आओ।
1: टिकोर, मुझे डीसी से आने वाले आदेशों की परवाह नहीं है। डीसी पानी के नीचे है। हम आखिरी मछली के मिलने तक इस पहाड़ी पर डटे रहेंगे। उन लाइट्स को और ऊपर करो।
0: इधर आओ, चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए हो। मजबूती से पकड़ कर रखिए, लाइन को पूरी तरह से स्थिर कर दीजिए और उस फ्लैप को सावधानी से बंद कर दें। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से कम हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी पूरी तापीय ऊर्जा को इस ठंडे वातावरण में खोते जा रहे हैं।

0: हवा वह चली गई है।
1: हम नीचे हैं, हम दब गए हैं सारा। क्या आपको सच में लगता है कि यह सच है?

0: ध्रुव 40 डिग्री शिफ्ट हो गया है। हम संरक्षित हैं अर्जमिज, वे सतह के नीचे हैं, वे और भी आर्कटिक की तरह हैं।
1: वे कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री खिसक गया है, ग्रह पलट गया है।

0: सुनो, हवा रुक गई है, बर्फ अब दरवाजे तक पूरी तरह से आ गई है।
1: हम इसके नीचे दब गए हैं

0: सिलेक्स धूल बहुत घनी है,
1: हम सांस ले रहे हैं
2: पहाड़ की।

संरचनात्मक अखंडता शून्य। मैनहट्टन

अरे रुको, पेड़ों को मजबूती से पकड़ लो। मैं नहीं कर सकता।

0: सारा पुरानी दुनिया बर्फ के नीचे दबी हुई है,
1: लेकिन हम अभी भी यहीं हैं।
2: वह चला गया।
3: हमें फिर से शुरू करना होगा,
4: हमें फिर से निर्माण करना होगा।

प्रभु सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेंगे, वे हमें सिखाएंगे, और अगर हम उनकी कही बातों को भूल जाएं, तो वे हमें याद दिलाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो किसी और को हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसी कारण पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला गया है। सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, पुनरुत्थान के बाद वह हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, उन्होंने हमें पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान की। तीसरे, उन्होंने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेला। उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। पढ़कर देखिए रोमियो को लिखे गए पत्र में अध्याय 8:34। दोषी ठहराने वाला कौन है? मसीह ही है जो मरा, बल्कि जो जी भी उठा है वही परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वही है। हालेलुया। उन्होंने केवल हमारे लिए मरण ही नहीं सहा, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए

0: विनती कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमने नहीं गाया था? हमने गाया था कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तीसरी बात, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंदेला। चौथी बात, हमारे लिए वे क्या कर रहे हैं? वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। वे किस बात के लिए विनती कर रहे हैं? योहन रचित सुसमाचार अध्याय 70 वचन 21 में लिखा है, वे सब एक हूं और हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए। वे सब एक हों जैसे हे पिता आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब हम में एक हों। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि हम सब एक हों। हालेलुया। हमारे बीच कोई विभाजन नहीं आना चाहिए, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट रहना चाहिए। जानते हैं इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। उस वचन को पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। क्या आपने देखा कि मानव जाति की सभी जातियों को उन्होंने एक ही रक्त से उत्पन्न किया है? देखिए, हम सबको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया है। प्रभु ने हम सबको एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हर किसी को स्थिर रहना चाहिए। यही उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या कर रही है? वे पिता के दाहिने और खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने हमें एक ही रक्त से उत्पन्न किया है। हम ही हैं जिन्होंने जाति के नाम पर खुद को अलग अलग कर लिया है। तुम कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति, हमने ही जाति का भेद बनाया। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने हम सभी को एक ही रक्त से उत्पन्न किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि ये कि तू उन्हें बुराई से बचाए रख। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की कि वो हमें बुराई से बचाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेमी व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। इतने प्रेमी हैं हमारे परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 24, हे पिता, जैसे तूने मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले प्रेम किया था, वैसे ही तूने जो महिमा मुझे दी है, वे जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी उसे देख सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि जहां मैं हूं वे भी वहां रहे, मेरे साथ, मेरे निकट, मेरे पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर उठे और उन्होंने कहा, मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। सबसे पहले वे क्या करते हैं जब वे पुनर्जीवित होकर प्रकट होते हैं? वे हमें बुराई से बचाकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरे, वे हमें पापों की क्षमा और मन फिराव का वरदान देते हैं। तीसरे, उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। चौथे, वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु, आपको मेरे हृदय में आना चाहिए, हमारे भीतर वास करें, मेरे अंदर निवास करें। आपको मेरे भीतर रहना चाहिए। हम संघर्ष करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। कई साल पहले ही अय्यूब ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमने संदेश के माध्यम से सुना कि जीवित होकर उठे यीशु मसीह हमें क्या भलाई देते हैं। अभी भी वही अच्छे चरवाहे की उपस्थिति हमारे हृदय को भर दे। ऐसी प्रार्थना है कि उनकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आए। हम सब प्रभु की ओर देखकर जो वचन हमने सुने हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु राजा हमारे साथ हैं। वे हमें सामर्थ्य देने आए हैं, वे हमें जीवन देने आए हैं। इस दिन हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हम सुनी गई बातों के लिए प्रार्थना करें? यीशु ने क्यों पुनर्जीवित हुए? सबसे पहले वे हमें आशीर्वाद देने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। दूसरा, यीशु पुनर्जीवित होकर हमें क्या देते हैं? वे हमें पापों की क्षमा और मन परिवर्तन देते हैं। वे हमें धर्मी बनाते हैं। हमें धर्मी बनाकर वे क्या करते हैं? वे न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि स्वर्ग में पिता के राज्य में हमें सूर्य की तरह चमकने योग्य भी बनाते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी आशीर्वाद है। तीसरी बात, यीशु जीवित होकर क्या करते हैं? वे हम पर पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आते हैं, तो वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें समझाते और प्रबुद्ध करते हैं। वे हमें सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को फूंका। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। आज भी क्या हम ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। प्रभु, मुझे मेरी बुराइयों से दूर रखो और मुझे आशीर्वादित करो। क्या हम प्रभु की ओर देखकर ये प्रार्थना कर सकते हैं? मुझे पश्चाताप की आत्मा दो। मुझे धर्मी बनाओ। मेरे सारे पापों को क्षमा करो और अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। हम कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। केवल इतना ही नहीं कि हे आत्मा, मेरे भीतर आओ। पुनरुत्थित मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम एक हों। वे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच कोई विभाजन ना हो। वे प्रार्थना करते हैं कि हम बुराई से सुरक्षित रहें। वे प्रार्थना करते हैं कि जहां वे हैं, हम भी वहीं हों। क्या हम ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो और बुराई से बचाओ। हे भगवान, मुझे अलग करके आशीर्वाद दो। हे पिता, हमें मन फिराने की आत्मा दो। हे प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा दो। प्रभु यीशु मसीह, हमें एकता में रहने के लिए अपनी कृपा दो। आप कहाँ हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां आप हैं, वहां हम भी रहे और आप हमारी सहायता करें? प्रभु, हम धन्यवाद और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पवित्र प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन भी आपने जो वचन दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई मर जाए या कोई हमें छोड़कर चला जाए, यीशु जीवित है। हे पिता, आप हमें आशीर्वाद दें और हर बुराई से दूर रखें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे याकूब ने प्रार्थना की, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हमें भी आशीर्वाद दें। आपने कहा है कि प्रभु का आशीर्वाद समृद्धि लाता है। प्रभु, हम सभी को आशीर्वाद दें और हमें पश्चाताप की आत्मा दें। प्रभु, हमें पश्चाताप की आत्मा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को दया करके क्षमा करें।
1: हे पिता, आपने पवित्र आत्मा को बिना माप के प्राप्त किया था। हमें भी अपनी अभिषेक को बिना माप के प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अभिषेक का संपूर्ण तेल हम पर उंडेला जाए, ताकि हम आपकी अभिषेक को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हमें एकता में रहना चाहिए। हमारे बीच में कोई विभाजन या कड़वाहट ना आए। हमें बुराई से बचाए रखा जाए। प्रभु, आप जहां भी हैं, हमें भी वही रहने का वो अनुग्रह दें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हर परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। प्रभु, आप ही हैं जो बहन को सामर्थ के साथ उपयोग करते हैं। इसके लिए, जैसा कि आपने किया है, हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने मांगा, वैसे ही आपने हमें हमारे संकटों से दूर किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए ही मसीह जीवित होकर उठे। क्या हम सब आज इस दिन प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, हमें हमारे संकटों से दूर कर आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, हमें आत्मिक आशीर्वाद दीजिए। हमें सांसारिक आशीर्वाद दीजिए और हमें सभी भलाइयां दीजिए। स्तुति हो प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, इस आनंदमय दिन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आप मृत देवता नहीं हैं। आपने कहा था मैं मर गया था, फिर भी देखो मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। ये परमेश्वर हमेशा के लिए अनंत काल तक हमारे परमेश्वर हैं, मृत्यु तक हमें मार्गदर्शन करने वाले। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपकी महिमा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभा के लोगों के लिए जिन्हें हम आमने सामने देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी को आशीर्वाद दें और सामर्थ प्रदान करें। प्रभु, कृपया शांति दें, आनंद दें। प्रभु, चाहे मेरी कोई भी कमजोरी हो उसे दूर कर दें, जो भी बंधन है उन्हें तोड़ दें, शैतान के सभी कार्यों को नष्ट कर दें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा उठाएं। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमें बुराई से दूर रखकर आशीर्वाद देने में सामर्थ हैं। प्रभु, आपकी कृपा हमें सशक्त बनाए रखे। हे पिता, किसी भी परिवार पर कोई जादू या टोना असर न करे। यीशु मसीह के नाम से हम सभी बुरी शक्तियों को नष्ट और दूर करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा आपने कहा था। प्रभु, हम शैतान के सभी कार्यों को नासरी यीशु मसीह के नाम में डांटते, बांधते और दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी रोग हो आप चंगा करते हैं, चाहे कोई भी कमजोरी हो आप उसे दूर करते हैं। हे परमेश्वर, आप जादू टोने की सारी बंधनों को तोड़ते हैं, शैतान के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। हे राजा, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दीजिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह संपन्न हो, जिनके पास संतान का सुख नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में शांति नहीं है उन्हें शांति दीजिए, जो लोग कर्ज की समस्या, आंसू और पीड़ा में हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, प्रभु, जो परिवार शराब पीते हैं उन्हें मुक्ति दीजिए। हे पिता, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जो परिवार व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, जो लोग केश में हैं उन्हें विजय प्रदान करें, बिछड़े हुए परिवारों को फिर से एक करें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे ज्ञान, भक्ति, शिक्षा, बुद्धि और क्षमता में उत्कृष्ट बने और चमके। हे प्रभु, सभी बच्चों को स्तुति करने वाले और प्रार्थना करने वाले बच्चों में बदल दें। प्रभु, हमारे छोटे बच्चों पर प्रार्थना की आत्मा उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। सभी बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, प्रभु की कृपा को धारण करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, महान कार्य करने वाले प्रभु, चाहे मुझ में कोई भी कमजोरी हो, चंगा करने वाले राजा, दया करे, दया करे, दया करे हर एक कमजोर व्यक्ति पर, और परमेश्वर की सामर्थ उन पर दया करे। हे प्रभु, चंगा करे, चमत्कार करे, अद्भुत कार्य करे। हे राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर एक के जीवन में, उनके हृदय में और बाहर अद्भुत कार्य करे। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप हर एक की आवश्यकता को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक की आवश्यकता को पूरा करें। हे पिता, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दें, जो लोग घर बनाते समय बीच में हैं उन्हें घर पूरा करने के लिए अनुग्रह दें। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों में गिरकर विनती करते हैं, जो परमेश्वर सोचने और मांगने से भी बढ़कर कार्य करते हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके बच्चे जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने हर्ष का कारण बने। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की आवश्यकताओं को आप पूरी करें। प्रभु की आशीर्वाद देने वाली और ऊंचा उठाने वाली कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की महिमा हर एक पर शासन करे। हे प्रभु, हम सारी स्तुति, आदर, महिमा और महानता आपको ही अर्पित करते हैं, जो जिम्मेदारी लेकर हमारी रक्षा करते हैं। हम ये सब कुछ हमारे प्रिय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में विनम्रता से मांगते हैं। हे परमपिता, आमीन।
2: इंगलिंग एसिन करम मादांद्र इदलानदु तमिल आंगिलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मणिगलिल कर्तन कृपयाल वेलिवरिकिंचदु इपत्रिके वेंडोर एंगलद मुगवरे तड़ुबु कोलला
3: एंगल मुगवरी येसुविन करम 12 கீழ் 80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் குன்னூர் 643-101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 944-30-780-19 மற்றும் 75-98-11-2435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643-101 நீலகிரி சவுத் இந்தியா. செல்போன் நம்பர்ஸ் 944-30-780-19 and 75-98-11-2435. Our email address acelinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: मसीह में प्रिय, हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में आपके पास चाहे कितने भी बड़े घर, संपत्ति और जमीन क्यों न हो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है
0: और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहे हैं। हमारा निवास स्थान इस संसार का नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। हमें उस गौरवशाली स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: क्या आप जानते हैं कि एक मानव दिवस कैसा होता है? क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं।
0: अय्यूब 8:9।
1: इतना ही नहीं, भजनकार कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 102:11।
0: प्रेरित याकूब लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब 4:14।
1: इसलिए यह सांसारिक जीवन, इसके खजाने और पृथ्वी स्थाई नहीं है।
0: यीशु ने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3।
1: तो आइए हम उस शानदार शहर, उस शानदार घर में जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।
0: पौलुस लिखता है, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं।
1: 1 कुरिन्थियों 7:31। तो फिर उस शानदार शहर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम थोड़ा ध्यान करें?
0: पहले धर्म ग्रंथ कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नदर तैयार किया है।
1: इब्रानियों 11:16।
0: प्रभु उन लोगों के लिए एक शहर तैयार कर रहे हैं जो शानदार स्वर्गीय भूमि की इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद इसकी इच्छा नहीं रखते तो वह हमें यह कैसे देगा? इसलिए स्वर्गीय देश से, उस सनातन नगर से प्रेम रखो, वहां जाने के लिए प्रार्थना करें, तभी प्रभु तुम्हें वह नगर देगा।
1: इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है,
0: सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
1: पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
0: कुलुसियों 3:1-2।
1: हमें स्वर्ग की चाहत और अभिलाषा की आवश्यकता है।
0: इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
1: मत्ती 11:12।
0: इसलिए सबसे पहले हमें स्वर्गीय नगर में जाने की इच्छा रखनी चाहिए।
1: प्रेरित पौलुस कहता है,
0: इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं।
1: 2 कुरिन्थियों 5:8।
0: मसीह में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपकी प्राथमिकता क्या है?
1: प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वहां आएं।
0: यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा।
1: यूहन्ना 17:24।
0: यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से उस शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
1: दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
0: भजन संहिता 23:6।
1: क्या हम भी परमेश्वर के नगर की लालसा करें?
0: दूसरा, पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
0: इब्रानियों 13:14-15।
1: इस दुनिया में हमारा कोई स्थायी शहर नहीं है, हम आने वाले इस राज्य की खोज में हैं।
0: इसलिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए।
1: इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:15। यदि हम परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। जिस शहर में हम रहेंगे वह प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84:4। यदि आप और मैं स्वर्गीय घर में रहना चाहते हैं, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर की स्तुति करे। पवित्र बाइबल कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रताशित वाक्य 19:1। पवित्र बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार उन्होंने हल्लेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगाने युग उठता रहेगा, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:3-4। बाइबल हमें एक आदर्श दिखाती है कि हमें कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19:5। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें प्रभु की स्तुति कैसे करनी चाहिए? पवित्र बाइबल कहती है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए स्वर्ग प्रशंसा का शहर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पवित्र बाइबल कहती है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। तीसरा, प्रेरित याकूब लिखते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? याकूब 2:5। इसके बाद हमें उससे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में जाने का विशेषाधिकार केवल उन्हीं को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। तो क्या हम प्रभु से प्रेम करें? हमें प्रभु से कैसे प्रेम करना चाहिए? यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। प्रभु चाहता है कि हम उससे पूरी तरह प्रेम करें। उससे प्रेम करने का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14:23। प्रभु से प्रेम करना उनके वचन का पालन करना है। यदि हम उसका वचन मानना चाहते हैं तो हमें उसका वचन अधिक पढ़ना होगा और उसे जानना होगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर हम प्रभु के वचन को कैसे जाने? इसलिए प्रभु के वचन को अधिक बार पढ़ें, प्रभु के वचन पर अधिक मनन करें। इसका ध्यान रखना, प्रभु से प्रेम करने का यही अर्थ है। जब हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपना राज्य देगा। उसने अपना राज्य केवल उन लोगों को देने का वादा किया है जो उससे प्रेम करते हैं। चौथा, प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने लिए कष्ट उठाने की बात नहीं है? उसके वचन के कारण, धार्मिकता के कारण, जब हम सताए जाते हैं और कष्ट उठाते हैं तो हम धन्य लोगों में बदल जाते हैं। उसका राज्य भी हमारा हो जाता है। क्लेश निश्चित रूप से मसीही जीवन का एक हिस्सा है। प्रेरित पौलुस यही कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। एक थिस्सलुनीकियों 3:3-4। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका सामना करने में संकोच न करें। ईश ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इसलिए हमें दुख तकलीफों से निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य तभी हमारा होगा जब हम धार्मिकता के लिए कष्ट उठाएंगे। इसीलिए पौलुस लिखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम 14:22।
0: क्लेश स्वर्गीय नगर में जाएंगे सीढ़ियां।
1: इसलिए कठिनाइयों से निराश मत होइए। हमारा जीवन इस संसार के साथ खत्म नहीं होता। हमारे पास एक शानदार शहर है। उस गौरवशाली शहर में जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस गौरवशाली राष्ट्र को कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए इस संसार पर भरोसा करके धोखा मत खाओ। प्रभु आपको अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी ने इस पर चिंतन किया। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे और आपको ऐसे महान आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
2: करम मादांद्रेलानद तमिल आंगिलम हिंदी मलयालम तेलुगु आगे आर मोड़ी कर्तन कृपया
3: इपत्रिकेसुवी करम 12 नगर डार्लिंगटन ब्रिज कुन्नूर 6431101 நீலகிரி மாவட்டம் தென்னிந்தியா. எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் 9443078019 மற்றும் 7598112435. இன் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் 12/80 அம்பேத்கர் நகர் டார்லிங்டன் பிரிட்ஜ் கோனூர் 643101 Nilgiri, South India. Cell phone numbers 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.
4: हजार स्तुति। हे अब्बा, हे पिता, आपकी स्तुति हो। प्रेमी पिता, आपकी स्तुति हो। अनंतकाल का पिता, आपकी स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। आत्माओं के पिता, आपकी स्तुति हो। ज्योतियों के पिता, आपकी स्तुति हो। दया का पिता, आपकी स्तुति हो। महिमा का पिता, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे मोल लिया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे बनाया है, आपकी स्तुति हो। पिता जिसने मुझे स्थिर किया है, आपकी स्तुति हो। मेरा पिता, आपकी स्तुति हो। हम सबों का एक ही पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपकी स्तुति हो। धार्मिक पिता, आपकी स्तुति हो। पिता मुक्त में है, आपकी स्तुति हो। धर्म के पिता, आपकी स्तुति हो। इज़राइल के पिता, आपकी स्तुति हो। जीवित पिता, आपकी स्तुति हो। पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे, इसलिए आपकी स्तुति हो। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रेम और शांति का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। अनादि परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सब प्रकार की शांति के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। तेजोमय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है, आपकी स्तुति हो। अब्राहम का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ईसा का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। याकोब का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यशुरून का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। इज़राइल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एलिया का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दाऊद का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। दानियेल का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। शाद्रक, मेशाक और अबेदनगो के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो। हमारे पितरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। घाटी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पहाड़ों का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सारी पृथ्वी का परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सबके ऊपर युगानुयुग परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। याकूब पर वर्णों पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आश्चर्य कर्म का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पराक्रमी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। समुद्र के गर्भ को तोड़ने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सुच अद्वैत सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। एक ही परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। अद्वैत परमेश्वर आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। स्वर्ग के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सच्चे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। कतन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। वाचा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आशा के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दयालु में धनी परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धर्ममय परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे अन्याय के प्रति प्रतिशोध के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप सच्चा ईश्वर जिसमें कुटिलता नहीं है आपकी स्तुति हो। सेनाओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई आपकी स्तुति हो। मेरा देखने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। दर्शन देने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सदा राज्य करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब ईश्वरों का ईश्वर आपकी स्तुति हो। वेदों को खोलने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे मेरे परमेश्वर हे राजा आपकी स्तुति हो। बड़ा परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। तुम्हारी सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। विजय प्रदान करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। शांति का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अधर्मी से क्रोध करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। जलन रखने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। क्षमा करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। उदार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे सुख की चमक के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरे अति आनंद के परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परम धन्य परमेश्वर आपकी स्तुति हो।

क्या आप लोग तैयार हैं नाचने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। यदि आप अपने आप को जवान मानते हैं तो आगे आके नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

वाले प्रियम ताली बजा कर उसके नाम में मकर आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा में

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वह हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशति राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशति ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें,
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलाप गीत अध्याय 3, शब्द 22, हम मित नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचनों, झूठों, झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं,
यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है। कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं। 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मामे जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं। यशाया अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं, उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देते हो। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

रही हूँ, ताली बजा कर उसके नाम को महिमा करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं, दिल

0: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो।
1: स्टेशन गिर रहा है,
2: पीछे मुड़कर मत देखो, स्टेशन गिर रहा है।
3: सभी लोग अभी तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाएं।
4: आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो,
0: स्टेशन गिर रहा है।

जो न केवल हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।

सारा रुको, मैं आ रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहें।

0: चल दर
1: धमकाना
0: सारा।
1: एलेक्स क्या हो रहा है? पूरी इमारत धंस रही है।
0: जब हेम्पटोट गिर रहा है तब चट्टान भी गिर रही है। हमें इस टावर के गिरने से पहले 10 मिनट में निकलना होगा। अब

0: क्यों नहीं है? अगर मैं मर गया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
1: चुप रहो, मूवर शेयरिंग। इमारत कट रही है।
2: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
3: क्या तुमने वो महसूस किया

0: देखो पानी चला गया है, सब चला गया है।
1: ये एक ड्रॉकेट है, लहर आ रही है। रुको,
2: ये टूट रहा है क्या?
3: प्राथमिकता के लिए पैसे दिए थे।
4: ट्रांसपोर्ट छत पर

0: आखिरी बचे हुए इंसान बनने के नाम। मैंने कहा था निवेश काम आएगा।
1: क्या तुमने वो महसूस किया?
2: हमें तो ग्रेनाइट के 400 फीट नीचे होना चाहिए था।

0: ये चला गया। एलेक्स न्यूयॉर्क अब बस खत्म हो गया है।
1: पीछे मत देखो, हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना होगा। पानी अभी रुका नहीं है।

0: हमारे पास एक सिग्नल है।
1: ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कृपया मुझे वो सैटेलाइट फीड्स तुरंत ऑनलाइन चाहिए। आंदोलन को ट्रैक करो और पुष्टि करो कि पानी किस दिशा में जा रहा है।
2: मास मीडिया की प्लेटें खिसक रही हैं।
3: प्लेटें खिसक रही हैं।
4: गहराई की निगरानी कर रहा हूं।

0: एलेक्स इन्हें देखो,
1: हम जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बना सकते।
2: उन कारों में लोग हैं,
3: अगर हम रुक गए तो लहर हमें बहा ले जाएगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यातायात जाम,

परिधि को बंद करें। मुझे सेकेंडरी मैनिफेस्ट की परवाह नहीं है। अगर वे अभी यहां नहीं है तो वे बोझ मात्र हैं।

नमस्कार, मेरा नाम है बनाने में आसान।

0: नमस्ते टेल, धन्यवाद। 1-2.5 अभियान याद है, कैटलिस्ट से खुशी हुई।
1: टीम ये दिलचस्प है, इंटरमीडिया क्रिएशन और प्रॉम्प्ट आधारित काम मेरे सिनेमैटिक एआई कंटेंट के लिए सटीक रहेगा। यूट्यूब और 4,500 में शामिल है लोग।

हमें बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने की पुष्ट रिपोर्टें मिल रही हैं। सिग्नल, ये प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है। Les signaux qui ont dit ça reste, Tito. यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको क्षेत्र और प्रासंगिकता की समस्या का सामना करना पड़ता है। हे भगवान।

0: एलेक्स, हीटर से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथों में कोई संवेदना नहीं है।
1: दबाव, वह चला गया। वातावरण में रिसाव हो रहा है।

0: आश्रय जगह में 101.3 एफए खराब हो रहा है। जल्दी करो, हमें उस पेट्रोल की जरूरत है।
1: ट्रंक की जांच करें, जल्दी करो।
0: मदद करो, हमें अंदर आने दो, दरवाजे से दूर रहो, मैं इसे खोल नहीं सकता।
1: एलेक्स, बस जाओ जाओ।

0: बात की चिंता मत करो। अगर आपको कोई कमजोरियां नजर आती हैं तो घबराए नहीं। मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 पद 23। ये क्या बताए है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। परेशान मत होइए, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय पवित्र स्वर्गीय पिता, शुक्रिया। इस खबर को सुनने वाले लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक चीजें करें। हमें बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ना सिखाएं। पापा, चमत्कार और चमत्कार करो। अपने बच्चे के आंसू पोछो। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ।
1: अध्याय 44 पद 8 की पुस्तक। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हाँ प्रियो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिए। हमें उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में ऊपर उठना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु की महिमा करनी चाहिए और उनके नाम की महिमा करनी चाहिए। उसकी प्रशंसा करो। प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन को ऊंचा करेगा, क्योंकि वे हर दिन अपने नाम की महिमा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। परमेश्वर आपको इस हद तक आशीष देने में सक्षम है कि आप उसे ऊंचा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 20 पद 7 पद 8। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उठकर सीधे खड़े होंगे। आप कई लोगों के बीच कर्जदार हो सकते हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे तब उसकी बड़ाई करके सीधे खड़े होंगे। यहोवा वह परमेश्वर है जो हमें खड़ा करता है। चिंता मत करो, अपने आंसू पोंछ लो। प्रभु ने आपकी कर्ज की समस्या को बदल दिया होगा। चाहे आपने कहीं भी संघर्ष किया हो और चाहे आप कहीं भी झुके हों, उसी स्थान पर भगवान निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे दर्द में हैं और आंसू बहा रहे हैं पिता, उनमें से प्रत्येक के आंसू पोंछना चाहिए, उनकी चिंताओं को बदलना चाहिए, आशीर्वाद और उत्थान करना चाहिए, उनके दिलों में शांति दें। सभी परिवार शांति से हो, आपका हाथ उनकी रक्षा करे। आप जिस अनुग्रह के लिए ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा और सारा सम्मान देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज का वादा के नाम से प्रार्थना करते हैं। यशायाह
0: की पुस्तक अध्याय 43 पद 5। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्यारे लोगों, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर तुम्हारे आंसू पोंछना चाहता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो वे हमारे लिए बड़े बड़े काम करता। परेशान मत होइए, अपने आंसू पोंछ लो। उसी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सोतों को बनाया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो कितना खुश, देखो कितनी बड़ी खुशी है। इस दुनिया में इतने करीबी पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये एक पति हो सकता है, ये आपकी पत्नी हो सकती है, ये आपकी माँ हो सकती है, ये आपका पिता हो सकता है। वे कुछ समय हमारे साथ रहेंगे और फिर हमारे साथ नहीं रहेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह जीवन भर हमारे साथ रहेगा, वह हर पल हमारे साथ रहेगा। आपको उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए और उसे मजबूती से थामे रहना चाहिए। हर दिन एक समुदाय में प्रार्थना करें, शास्त्र पढ़ें, घुटनों के बल खड़े होकर प्रार्थना करें। आपको प्रभु की ओर देखना चाहिए, उसका पता चलेगा।

वह तेरी महिमा करेगा। दूसरा इतिहास अध्याय 1:1, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। हाँ प्यारे लोगों, परमेश्वर राजा सुलेमान के साथ रहा और उसे महान बनाया। तो जबकि यहोवा हमारे साथ रहेगा, वह हमें अवश्य आशीष देगा। वह हमारे जीवन में महान कार्य करेगा, वह हमें महान बनाएंगे। जहाँ कहीं तू आंसू बहाएगा, वहाँ परमेश्वर तुझे उठाएगा, आशीष देगा और तुझे महान बनाएगा। परेशान मत होइए, आओ प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुक्रिया। अपने हर एक बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए जो आपके जीवित वचन को सुन रहे हैं। अपनी ताकत और महिमा के साथ कवर करें। सबके चेहरे से आंसू पोछो। हे यहोवा, तुझे उन्हें जीवित गवाह में बदलना होगा। सभी को आशीर्वाद और महिमा से भर दें। हम आपको सारी महिमा और महिमा देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13:5, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हाँ प्रियो, मत भूलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:18, मैं मर चुका हूँ, अब देखो मैं हमेशा के लिए रहता हूँ, मौत और नरक की चाबी मेरे पास है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जीवित परमेश्वर जो हमें हर पल बचाता और बचाता है, वह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी कठिनाइयों को बदलेगा और आपके आंसू बहाएगा। वह एक जीवित ईश्वर है, इसलिए वह आपसे किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। बेशक वह आपकी समस्या को बदल सकता है और आपके आंसू पोंछ सकता है। चिंता न करें, बस उसे देखें, उसे आंसुओं से बुलाओ। यीशु निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को बदल देगा। यदि आपके बच्चे अनपढ़ हैं, तो ये उन्हें बुद्धिमान बना देगा। क्या आपके परिवार में कोई समस्या है? कोई दुकान नहीं? क्या आपका करियर अच्छा नहीं है? क्या आप चिंतित हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है? थोड़ी देर के लिए प्रभु के सामने घुटने टेकें। प्रार्थना करना, वह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। तुम खुश हो सकते हो। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, धन्यवाद। हे प्रभु, वही करें जो आपके लोग चाहते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उनके जीवन में अच्छा, चमत्कार और चमत्कार करें और केवल अपने नाम की महिमा करें। दया और भलाई उनकी रक्षा करेगी। उनकी बाधाओं को उनसे पूरी तरह हटा दें। हे यहोवा, उन्हें दृढ़ कर और उन्हें शांति और आनंद दे कि वे तेरे नाम से आनंद करें। उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। यशाया अध्याय 9:6, आमीन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ प्यारे लोगों, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल इस संसार में आपके लिए एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है। निश्चय वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुम्हारे दुखों को बदलेगा। वह तुम्हें पापों और शापों से छुड़ाएगा। निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे और मेरे लिए दिया गया है। दुख, आंसू और समस्याएं जो कुछ भी आपके पास हो, वह ही इसका समाधान कर सकता है। वह परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार को दिया गया है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। उसे अपने दिल में पूरी तरह से स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि वे कैसा है? उनका नाम अद्भुत है। वह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। उनका जन्म अपने आप में एक आश्चर्य है। उनका जन्म वर्जिन मैरी के गर्भ में हुआ था। चिंता मत करो, वह तुम्हें सलाह देगा। वह न केवल अद्भुत परमेश्वर हैं, वे एक परामर्शदाता हैं। आपकी हर स्थिति में जब जरूरत होगी तो वह आपको सलाह देगा।
आपकी जो भी आवश्यकता हो और जब भी आपको परामर्श की आवश्यकता हो, वह आपको परामर्श देगा। जब तू उसको पुकारे और जो जो युक्ति तुझे मिले वह प्रार्थना करे, तब वह तुझे सम्मति देगा। वह पराक्रमी ईश्वर है, वह आपकी सभी बीमारियों से चंगा करने के लिए पराक्रमी है। करना उसके लिए संभव है, वह पराक्रमी है। उसके पास आओ और पूछो, वह अपनी शक्ति से हमें चंगा करता है। वह अपने पराक्रमी को भेजेगा और तुम्हें चंगा करेगा। चिरस्थाई पिता, उन्होंने कहा कि मैं मर गया लेकिन मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। हमेशा के लिए वह जीवित है, वह आपसे नहीं हटेगा, एक मिनट भी वह आपसे नहीं हटेगा। वह शाश्वत जीवित परमेश्वर है। चिंता मत करो, शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वही शांति खुशी दे सकता है और आपकी समस्या को बदल सकता है। कोई भी समस्या हो वह आपको शांति दे सकता है। क्या हम उसे पुकारें? क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सभी को आशीर्वाद और मजबूत करें और उनकी रक्षा करें जो आपके शब्द सुनते हैं। उनके आंसू पोछो, उनके दुख बदलो। तूने कहा है कि तू उनके सब मुखों पर से उनके आंसू पोंछ डालेगा, हे प्रभु। इसलिए उनके आंसू पोछें, उनके दुखों को बदले, शांति सुख और सांत्वना दें और कृपया उनके जीवन में सुधार करें, हे प्रभु। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। आपकी कृपा उन पर बनी रहे, हे प्रभु। हम आपको सभी महिमा और स्तुति देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ। आमीन, आमीन।

0: यशाया की पुस्तक अध्याय 26 पद 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। हमें उस पर कैसे भरोसा करना चाहिए? भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 71 पद 14, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। एक या दो दिन नहीं, हमें हमेशा उन पर भरोसा करना चाहिए। भजनहार इसे इस प्रकार कहता है, भजन संहिता अध्याय 62 पद 8, है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। जब हम हर समय उस पर भरोसा करते हैं तो वे पूर्ण शांति जो प्रभु देता है वे हमारे दिलों को भर देगी। हमें परिस्थितियों को देखकर प्रभु पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को एक बच्चा देने का वादा किया। यहाँ तक कि इब्राहिम और सारा भी बहुत बूढ़े थे। क्या आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 पद 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हैं, हालांकि हमें पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। हमें उसे मजबूती से पकड़ना चाहिए, तब प्रभु हमें पूर्ण शांति देगा। इसलिए अय्यूब ने कहा, अय्यूब अध्याय 13 पद 15, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो अभी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। क्या हम आज इसके लिए खुद को समर्पित कर दें? निश्चय ही यीशु आपको आशीष देगा। क्या अब हम प्रार्थना करें? मेरे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग तेरे जीवित वचनों को सुने उन्हें उनमें से प्रत्येक को आशीर्वाद देना चाहिए। उन्हें मजबूत करें अपने अभिषेक से बंध होने के लिए। तेरा अनुग्रह उन्हें घेरे रहे प्रभु। उनके पूरे जीवन से डर और रोमांच को दूर करें। उनके जीवन में चमत्कार और चमत्कार करें। आप स्वर्ग से इस दुनिया में आए हैं हे प्रभु, आप हमें बचाने के लिए पैदा हुए थे। यहोवा हमारे लिए आया था। हर किसी के आंसू पोछे, उन्हें आशीर्वाद दे। महान काम करो और अपने नाम की महिमा करो। भगवान, मैं तेरी सारी स्तुति आदर और महिमा देता हूँ। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
1: यूहन्ना अध्याय 14 पद 27 की पुस्तक,
0: तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि परेशान और डरो मत। इस दुनिया में जो भी समस्या आएगी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए परेशान और डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की यही वाणी है, मैं सब विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। यशाया की पुस्तक अध्याय 49 पद 16, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी हथेलियों में खींचा है, उसके हाथों को पीटा और कुचला गया था। उस हाथ में वह हम सभी को गढ़ा गया है। यदि आप अपनी हथेली में पैसा रखते हैं तो क्या आप इसे नीचे रखेंगे? हम अपनी हथेली में जो कुछ भी रखते हैं उसे नीचे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे कितना सुरक्षित रखेंगे? मनुष्य इस हद तक रक्षा करता है कि हम कर रचिता हमें अपनी हथेली में कितना रखता है और हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमें सहारा देता है और अपने प्रेम से हमें गर्म करता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सबको सुख और शांति दो, सभी को आशीर्वाद दें, रक्षा करें और ऊपर उठाएं। आपका आशीर्वाद उन्हें घेरे रहे। उनकी जो भी कमजोरी है उसे ठीक करना, किसी भी बीमारी को ठीक करता है। प्रिय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें पूरी तरह से चंगा करो और अपने नाम की महिमा करो। मैं आपको सभी प्रशंसा, महिमा और धन्यवाद देता हूँ।
1: मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना
2: को यीशु के नाम से
1: यूहन्ना अध्याय 4:4
2: आमीन।
1: हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे गुस्से जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्यारे लोगों, क्या आप जादू से प्रभावित हुए हैं? इसे देखने से डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह आपकी समस्या से बड़ा है। कोई समस्या कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर जो हम में है वह महान है। चिंता मत करो, परमेश्वर महान कार्य करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7:21 की पुस्तक कहती है, उससे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। हमारे पास जो विरोध आ रहा है उसे देखकर डरो मत, परेशान मत हो, क्योंकि यहोवा महान है, वह तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने लोग परेशान हैं कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक समस्या है, मुझे बहुत समस्या है, मेरे पास ब्याज ऋण है और लोग चिंतित हैं कि मैं इस ब्याज ऋण का भुगतान कैसे कर सकता हूँ। ऑफिस में किसी तरह की परेशानी होने से कुछ लोग परेशान हैं। हर आंसू पोंछो और सभी समस्याओं को बदलो और हर लोगों को आराम और खुशी दो। प्रभु आपको महान कार्य करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन बच्चों को स्मृति अवश्य दे जो चिंतित हैं कि परीक्षा आ रही है। उन बच्चों को अच्छी बुद्धि देनी चाहिए जो चिंतित हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। आपको बड़ा काम करना चाहिए। प्रेम के परमेश्वर सभी को आराम, शांति और खुशी दे और उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें ऊंचा करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं और हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
2: दानियेल पुस्तक प्यारे अध्याय की पद 17
1: आमीन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर हमें मुक्त कर सकता है। मेरे पास इतनी कठिनाइयां हैं, मुझे कौन छुड़ाएगा? इसलिए तुम आंसू बहाओगे, अपने आंसू पोंछ लो। निश्चय हमारा परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से बचाएगा, तो थको मत। बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91:3, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस दुनिया में कीट बढ़ रहे हैं, परेशान मत होइए। तो बाइबल कहती है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91:6, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अथक प्रार्थना करें, परमेश्वर निश्चय ही हमें बचाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें मेरा धन्यवाद। कितने लोग बिना शांति और बिना सुख के हैं, उन्हें शांति और खुशी दें। परमेश्वर उन्हें आराम और अच्छाई दो। दया गुल होनी चाहिए, उन्हें मौन से भर दो। वे हर जगह शांति के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को शांति देनी होगी। हर तरफ जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। आपको हमें इन सभी रोगों से मुक्त करना होगा। आपको हम सब पर शासन करना चाहिए। महान कार्य करो और अपने नाम की महिमा करो, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं
2: भजन संहिता अध्याय 84:12
1: की पुस्तक, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धैर्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ प्यारे लोगों, दया है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम किस पर निर्भर हैं? क्या हमने आत्मनिर्भरता पर भरोसा किया है? क्या हम दोस्तों पर भरोसा करते हैं? क्या हम पैसे और प्रसिद्धि पर भरोसा करते हैं? इसके बारे में सोचो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप धैर्य होंगे। कोई कमी नहीं है। कैसी भी समस्या हो,
2: प्रभु हमें नहीं छोड़ते। यहोवा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सब बातों में विजय दिलाएगा। उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। हाँ प्यारे लोगों, चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 62 पद 8 है, लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। अच्छाई, बुराई और कठिनाई आने पर हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछता है। अच्छा और बुरा आने पर कृतज्ञता पूर्वक उसकी स्तुति करें। हमें वैसे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ प्यारे लोगों, तब यीशु मसीह आपके जीवन में महान कार्य करेगा। वह आपको मुक्त कर सकता है और आपको बचा सकता है। क्या आप हमेशा उस पर भरोसा करते हैं? हाँ प्यारे लोगों, हर मिनट उस पर भरोसा करना चाहिए। जब आप इन हिंसक रोगों से पीड़ित होंगे तो वे निश्चित रूप से आपके आंसू पोंछेंगे। वह आपकी सारी चिंताओं को बदल देगा। वह आपकी बीमारी का इलाज करेगा। क्रेडिट मुद्दे को बदलता है। वह आपको शांति और खुशी देगा। आइए अब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता की सराहना करते हैं। धन्यवाद यीशु, अपने बच्चों को आप पर पूरा विश्वास करने में मदद करें। उन्हें आप पर भरोसा करने का अनुग्रह दें। हर समय हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में और विपत्ति में आप पर भरोसा करने में उनकी मदद करें। हर जीवन में उनका आश्रय, साथी और गढ़ बनो। हम कमजोर बहनों और भाइयों को ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भगवान, आप ही उनकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। संहिता अध्याय 9:10 की पुस्तक भजनहार दाऊद कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे तो वे हमें कभी न त्यागेगा। हमें प्रतिदिन प्रभु की खोज करनी चाहिए। सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद देना चाहिए उनकी पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए। यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहें तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 पद 10। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो सब भलाई हमारे पास आएगी। प्रतिदिन प्रभु को खोजो। प्रभु निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सभी आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा, ताकि कोई अच्छाई कम न हो और कोई आशीर्वाद कम न हो। प्रतिदिन प्रभु को खोजो, निश्चित रूप से वे आपको आशीर्वाद देगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे अच्छे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वादा सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद और उत्थान करे। आपको किसी भी आशीर्वाद को खोए बिना अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आप जो प्यार करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज के पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं। 23:1 आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ मेरे प्यारे लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। यदि प्रभु हमारे जीवन में एक अच्छा चरवाहा होता तो हमें न भूख, न प्यास, न पीड़ा होती। इसलिए परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आपको और मुझे कहना होगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और हम सभी को उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार है। हमें अपने मन में सच में कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इस दुनिया में हमें उनके जैसा अच्छा चरवाहा नहीं मिलेगा। केवल वही अच्छा चरवाहा है। हमें उसे अपनी स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों आप स्कूल और कॉलेज जाने लगे हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। वह एक अच्छा चरवाहा है। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा था। यीशु मसीह आपका अच्छा चरवाहा होगा, आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के समान मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका से मार्गदर्शन करेंगे और आपको सब कुछ सिखाएंगे। चिंता मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं तेरी स्तुति और करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं इस दिन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनको स्वर्ग से ज्ञान और याद दो। हे प्रभु, उन्हें शिक्षा दो। परमेश्वर, आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप बोलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर, उन्हें हर मिनट सिखाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करें। इसी तरह मैं जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके चेहरे से आंसू को चुक दें, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन।

0: product from Jino Kumbhambadam Music Factory.
1: तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हाँ प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग मानव परामर्श के आदि हैं। वे प्रभु के वचनों को नहीं सुनते, वे मानवीय शब्दों और आदेशों के गुलाम हो जाते हैं। मानव प्रेम की लालसा में वे इसमें पड़ जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ उन्हें प्रसन्न करते हुए मानव के गुलाम बन जाते हैं, कुछ लोग कर्ज में डूब जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं, कुछ लोग ऋणदाता के आदि हो जाते हैं। कभी किसी इंसान का गुलाम मत बनो, भगवान जो कहते हैं उसका पालन करें। अपनी आत्मा को मत खोना। अभी भी अन्य लोग बैंक के कर्जदारों के लिए जमानत पर हस्ताक्षर करके बंधन में बंधे हैं। आइए हम ऐसी गुलामी में न फंसे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इसलिए किसी भी आदमी के गुलाम मत बनो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, क्या आप इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद और आराम प्रदान करें। सभी लोगों को ऊपर उठाना चाहिए।

0: हाँ परमेश्वर। और दाऊद ने कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करें जो अब आपका वचन सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। आपको उनके जीवन में चमत्कारी कार्य करने चाहिए। तुम वही करने जा रहे हो जो मैंने अपनी प्रार्थना में की है। हजारों और हजारों धन्यवाद। मैं आपको सारी स्तुति, महिमा और सम्मान देता हूँ। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।
1: भजन संहिता की पुस्तक आमीन। अध्याय 79 पद 32।
0: हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हाँ प्यारे लोगों, इस संसार में अनेक संकट, दुर्घटनाएं, अनेक रोग, दुर्बलताएं, विपत्तियां आती रहती हैं। हम ऐसे समय में रहते हैं, फिर भी शास्त्र कहता है कि जो लोग प्रभु को खोजते हैं वे अपने दिलों में जीवित रहेंगे। आप प्रतिदिन प्रभु को खोजते हैं, उससे प्रार्थना करें कि कोई भी कठिनाई क्यों ना हो। सुबह उठें, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। प्रभु की अच्छी स्तुति करते रहना चाहिए, धन्यवाद देते रहो। आपका जीवन मंगलमय होगा। कोई प्लेग आपको नहीं छुएगा। आपके सामने कोई खतरा या दुर्घटना नहीं आएगी। आप जहां भी जाएं, स्तुति और प्रार्थना करें। बेशक आपको किसी खतरे या दुर्घटना का सामना नहीं करनी पड़ेगा। तुम जहां भी जाओ, स्तुति और प्रार्थना करते रहो। निश्चय तुम पर कोई संकट न आएगा। परमेश्वर कहता है कि हमारा हृदय जीवित रहेगा। आमोस की पुस्तक अध्याय 5:4। मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। जीवित रहने का क्या अर्थ है? हम भी इस दुनिया में रहते, यीशु पूरी पृथ्वी पर राजा बनकर आ रहा है। उसकी उपस्थिति में जीवित रहेंगे और हम उसके साथ शासन करेंगे। इसलिए यहोवा कहता है कि तुम जीवित रहोगे। यहाँ उत्तरजीविता वास्तविक है। हम भी उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। यीशु राजाओं के राजा के रूप में आएंगे। हम यीशु के साथ भी इस दुनिया पर राज करेंगे। उससे प्रार्थना करो, यकीनन आप जीवन में उस आशीर्वाद को देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जो हमें प्यार करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, अपने बच्चों को किसी भी खतरे से दूर रखें। उन्हें किसी भी शिकारी बीमारी से बचाना चाहिए। आपको उन्हें आशीर्वाद देना होगा और उन्हें ऊपर उठाना होगा। मेरे लिए देखो, तुमने कहा था कि तुम जीवित रहोगे। हमें अपने साथ भी शासन करने की कृपा दो। भगवान लोगों को विहानन प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। उन बच्चों को आशीर्वाद दें और उनका पालन पोषण करें जो अब जीवित वचन को सुन रहे हैं। हम आपको महिमा और सभी प्रशंसा देते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ।
1: प्रकाशित
0: प्यारे पिता, आमीन। अध्याय 3:3। सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ प्यारे लोगों, आप कह सकते हैं, मैं एक छुड़ाया हुआ व्यक्ति हूँ। तुम मुझसे पश्चाताप करने के लिए कैसे कह सकते हो? प्रभु ने सर्दीस की कलीसिया से इस प्रकार कहा, शुरुआत में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त करते हैं, सेवा करते हैं और कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं जो अच्छे हैं। लेकिन कई बार अनुमानतः हम पाप में पड़ जाते हैं। प्रभु उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहते हैं जो अभिमान से पाप कर रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12:21। पौलुस कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया का आध्यात्मिक अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुमने झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बलखेड़े हों। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करनी पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। इसलिए हमें जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उन्हें बहुत पवित्रता की आवश्यकता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 17:30 इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्रिय स्वर्गीय पवित्र पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दिन मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्हें स्वर्ग से ज्ञान और स्मरण शक्ति दो। हे प्रभु, यदि उन्होंने एक बार भी सीख लिया है तो उन्हें प्रभु सिखाओ। आप जैसा सिखाने वाला कोई नहीं है। आप बोलते हैं, नेतृत्व करते हैं और उनके हाथ पकड़ते हैं, उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अनुग्रह देते हैं। भगवान, उन्हें हर मिनट सिखाओ, उनका हाथ पकड़कर उनका नेतृत्व करें। इसी तरह मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो सभी जरूरतमंद हैं। आप उनके चेहरे से आंसू पोंछने के स्वामी हैं। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊपर उठाएं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यीशु के नाम से पूछता हूँ, प्यारे पिता, आमीन।

0: अध्याय 13:6। इसलिए हम बेधक होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी बात से नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथी है, वह वही है जो हमारी मदद कर सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें काम करना चाहिए, प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हमारा सहायक होगा। भजन संहिता 28:7 की पुस्तक कहती है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। हमारे दिल को पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई भी इंसान एक भ्रम है। यदि हम केवल प्रभु पर भरोसा करते हैं तो सहायता उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। मदद जरूर मिलेगी। क्या हम उससे प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और प्यार से मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, जो इन जीवित वचनों को सुनते हैं उन पर दया करो। बहुतों को समस्याएं और संघर्ष हैं। हे मेरे परमेश्वर, लोगों की समस्याओं और संघर्षों को बदलें। कई लोगों को तरह तरह की आपत्तियां हैं। विरोध के बीच यहोवा परमेश्वर को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। आपने कहा था कि जब शैतान बाढ़ की तरह इकट्ठा होगा तो पवित्र आत्मा उसके खिलाफ झंडा उठाएगा। आपके बच्चों के खिलाफ बहुत सारे जादू और जादू मंत्र हैं। सभी बुराइयों और समस्याओं से हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जीवित रहें और सुरक्षित रहें। सबका ख्याल रखना, परमेश्वर की कृपा उन्हें घेर ले। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक का वादा प्रार्थना को भजन संहिता 16:6 की पुस्तक मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ प्यारे लोगों, हमें प्रभु को हर चीज से पहले रखना चाहिए। हमें हर चीज में प्रभु को अपने सामने रखना चाहिए, चाहे वह व्यवसाय हो या परिवार। क्या आपको क्रेडिट की समस्या है? चिंता मत करो, यीशु से प्रार्थना करें। इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछो। हे प्रभु, मुझे यह ऋण स्वयं चुका दो और प्रभु के हाथ में पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु निश्चय हमें प्रतिफल देगा। वह हमारी दुर्दशा बदल देगा, वह समस्या को बदल देगा और आपके काम, परिवार, व्यवसाय में आपके साथ रहेगा। चिंता मत करो। भजन संहिता की पुस्तक 138:8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ प्यारे लोगों, जब हम उसे अपने सामने रखेंगे तो यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ भी करेगा। चिंता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी देगा, वह तुम्हारे आंसू पोंछेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम कृतज्ञता पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिताजी। अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस शो को सुन रहे हैं। सबका भला करो और उन्हें मजबूत करो। हर क्रेडिट समस्या को बदलें। अब कर्जदारों को चुकाना होगा। उन्हें वो सब कुछ दे जो उन्हें चाहिए और आंसू पोंछ दे। जिन लोगों को काम में परेशानी हो रही है उनके लिए काम पर समस्या बदले और उन सभी को काम पर पदोन्नति दे। उनकी रक्षा करें। ईश्वरीय उपस्थिति हमेशा सबके साथ रहे। पारिवारिक समस्याओं को बदलना चाहिए और परिवार में बड़ी शांति लाना चाहिए। झगड़े सब कुछ बदल देते हैं। उनके आंसू पोंछे और परिवार में दिव्य शांति और खुशियां दे। ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने कहा, मत्ती 18:19-20 की पुस्तक फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जनवरी पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब हम एकजुट होंगे और जब हम एक मन से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे। यह सच है कि प्रार्थना हर जगह होती है, लेकिन एकता और प्यार की कमी है। यीशु हमारे साथ रहेगा जब दो या तीन लोग एक साथ आएंगे और यीशु के नाम पर एक स्वर में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे सांस की तरह है। एक मन से प्रार्थना करना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखने के लिए बहुत सावधान रहना होगा। पौलुस यही उपदेश देता है। इफिसियों अध्याय 4:2-3 की पुस्तक, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इस एकता को तोड़ने के लिए शैतान सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हमें शैतान के कार्यों और इरादों को हराना चाहिए। देखो क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और कलीसिया में पुनरुत्थान शुरू हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 2:1-2 की पुस्तक, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। पवित्र आत्मा तभी उंडेला जाता है जब वे एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमें परिवारों, चर्चों और मंत्रालयों में एकता में प्रार्थना करना सीखना चाहिए। क्या हम प्रार्थना करें? मेरे प्यारे स्नेही अग्रणी स्वर्गीय पवित्र पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखते हैं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उनके आंसू पोंछें जो इस संदेश को सुनते हैं। हे प्रभु, परिवार में सभी समस्याओं को बदलना चाहिए। उन्हें उनकी बीमारी से मुक्त करें, उन्हें उनके आंसुओं से मुक्त करें, उन्हें उनके श्राप और पापों से मुक्त करें और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्त करें। एक साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। परमेश्वर, कुछ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें बचाओ। प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मेरे परिवार में हमेशा एक समस्या है जो चिंता कर रहे हैं। उनका उद्धार करो और अपने नाम की महिमा करो। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें ऊंचा करें। मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूँ। नम्रता से मैं आपसे यीशु के नाम में पूछता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। संहिता की पुस्तक अध्याय 29:11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इस दुनिया में हर कोई क्या विलाप कर रहा है? शांति नहीं है, भीतर शांति नहीं है। ये मन को बहुत भ्रमित करता है, यह बहुत थकाऊ है। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ और शांति नहीं होती। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें शांति दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम उसके लोग हैं तो वह हमें शांति देगा, वह शांति और भलाई देगा। आप अपने जीवन में धन्य होंगे, आप खुश होंगे। उसके लोग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 7:23, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हमें वो सुनना चाहिए जो यहोवा कहता है, तब यहोवा हमसे भी बातें करेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तब यहोवा हमसे बात करेगा, तब वो हमें शांति देगा, आशीर्वाद भी देंगे। क्या आप जानते हैं कि वे किस तरह की शांति देता है? वह कहता है कि ये एक नदी की तरह है, वह हमें शांति देगा। चिंता मत करो कि शांति नहीं है, बेशक यीशु हमें शांति देंगे। जब मेरे पिता और माता की मृत्यु हुई तो मैं बिना शांति के अत्यधिक चिंतित था। यहोवा ने कहा, मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं शांति में हूँ। मुझे वो शांति मिली है। तय करें कि आप सुनेंगे कि उसे क्या कहना है, तब तुम उसके लोग होगे। एक व्यक्ति होना उसके लिए क्या ही विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार को याद मत करो। क्या हम प्रार्थना करें? हमारे पिता जो हमें प्यार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धन्यवाद यीशु, हमें अपने लोगों में परिवर्तित करें और हमें अपनी शांति और आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, हम में से प्रत्येक किसी न किसी तरह से आपकी आवाज का पालन किए बिना जिया है। हम अब आपके वचन को सुनने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपका जीवित वचन सुनता है वह आपका वचन सुनेगा और आपके लोग बनने का अनुग्रह प्राप्त करेगा। आपको ये करना चाहिए। हर घर को आशीर्वाद और मन की शांति दें। सारी महिमा और धन्यवाद तेरा हो। हम आपको यीशु मसीह के नाम का वादा करते हैं।
1: हाँ प्यारे
0: प्यारे पिता,
1: मैं आप सभी को मेरी ओर से नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सपयाह की पुस्तक अध्याय 3 पद 15। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। अब आप नुकसान नहीं देखेंगे। चाहे कितने ही लोग काम से बाहर हों, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, यहोवा ने कहा था कि वो 2022 में आपके बीच होगा। प्रभु को अपने बीच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हागाई की पुस्तक अध्याय 2 पद 5। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। मिस्र का क्या मतलब है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 12। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। गुलामी का क्या मतलब है? पापपूर्ण दासता को संदर्भित करता है, इसलिए हमें पाप के बंधन से बाहर आना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या हम निश्चित रूप से पाप से बाहर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम प्रार्थना करें? स्वर्गीय पवित्र पिता, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। पिछले वर्ष के कई खतरों और विपत्तियों के दौरान हमारी रक्षा करने, दृढ़ करने और दृढ़ करने के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस पूरे वर्ष सभी के साथ रहें। पीछे हटने से बचना चाहिए और सभी चिंताओं, आंसुओं, पीड़ाओं को बदलना चाहिए। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना